हजुर, कार्यक्रमको रूपरेखाको जानकारी पछि अब हामी लाग्दछौ रोल्पा जिल्लामा सञ्चालनमा आएका संचार माध्यमका नम्बरको जानकारी गराउनतर्फ। रेडियो रोल्पा 086-440-101, रेडियो जलजला 086-440-271, रेडियो सुनसरी 97-4-88-85-814, रेडियो मालसरी 086-440-172, रेडियो होलेरी 98-46-79-88 र 98-5-78-58-78, रेडियो मारियावा 086-400-141, रेडियो पल्लवी 98-2-98-09-130, रेडियो जन्मभूमि 98-4-78-39-414, रेडियो सूर्यमुखी 98-5-78-26-501, अनलाइन रेडियो त्रिवेणी 98-6-49-63-269, रोल्पा समाचार साप्ताहिकी 97-4-85-00-275, रोल्पा खबर साप्ताहिकी 98-6-69-22-823, सन स्टार साप्ताहिकी 98-4-77-672, जलजला पोस्ट साप्ताहिकी 98-4-78-04-090, जुनकिरी साप्ताहिकी 97-4-85-00-335 र अन्तिममा जनाक्याम छ राष्ट्रिय साप्ताहिकी 086-440-306 रहेको छ।

हजुर, हामी कहाँ काँचो कपडा, फेन्सी, सिरक डसना सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम सिद्दिकी, भित्री बजार आफ्नै भवनमा, भाग्यश्वरी एग्रोभेट सँगै सटेको। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9890943400 9652888404। न्यू कोइलाबा सस्तो कपडा पसल, होलेरी बजार, रोल्पा।

एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुक्राम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जिमराज घरती मगर, स्वर्गीय सावित्रा घरती मगर, भतिजीहरू दुमा पुन मगर, खिमी पुन मगर, मना

पुन मगर, बबिता घरती मगर, निमकली पुन मगर, भतिजा भतिजीहरू, खिम बहादुर घरती मगर, खम्मी घरती मगर, बल बहादुर घरती मगर, देवमाया घरती मगर, बालकुमारी पुन घरती मगर, रविन्द्र घरती मगर, सन्ध्या पुन घरती मगर, भीम बहादुर घरती मगर, वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका उडा

0: सम्पूर्ण मलामी जन छर छिमेक इष्ट मित्र आफन्तजनहरूमा उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँमा लामो समय अनुभव प्राप्त स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिमला तिवारी अब बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराईमा।
2: डाक्टर बिमला तिवारीद्वारा दिइने सेवाहरू:
3: पाथेघरको मुखको क्यान्सर, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारी गडबडी, गर्भवती चेक जाँच तथा उपचार र प्रसूति सेवा,
2: पाथेघर सम्बन्धी समस्याको अपरेसन सेवा,
4: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू,
5: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
6: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ हात जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादवद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा,
10: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
11: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटिजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
1: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082563218।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम

दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुखराम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देवर तथा देवरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जेमराज घरती मगर, स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर, भतिजीहरू दुमा पुन मगर, खिमी पुन मगर, मना पुन मगर, तारामती बह गरी विष्णु घरती मगर, कृष्णी पुन मगर, देवमती घरती मगर, पुष्पा पुन मगर, बबिता घरती मगर, निमकली पुन मगर, भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर, खम्मी घरती मगर, बल बहादुर घरती मगर, देवमाया घरती मगर, बालकुमारी पुन घरती मगर, रविन्द्र घरती मगर, सन्ध्या पुन घरती मगर, भीम बहादुर घरती मगर, वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर

घरती मगर को यही मिति 2083 साल भाद्र 22 गते का दिन 91 वर्ष को उमेर में भएको असामयिक निधन।